दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: कहानी सुनाओगी?
1: जरूर सुनाऊंगी। इधर आओ, बोलो कौन सी कहानी सुनोगे?
0: तोते और बंदर की।
1: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।